0: parents who love you. This holiday weekend, whether you're relaxing at the cottage or just hanging around with your friends, if you're going to be drinking, please drink responsibly. Plan ahead for a safe trip home. We all have our own reasons. Think about yours.
1: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਫਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ radiosursangam.ca ਫੋਨ 403-585-0910 ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ
2: Hola amigos, los invito a escuchar mi programa radial Soy Latinoamericano los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Les ofrezco noticias, comentarios, hermosa música latina y regalos. Los espero el próximo miércoles para que juntos celebremos nuestras raíces latinoamericanas.
3: जब भी जरूरत पड़ती है अल्बर्टा वासी एकजुट हो जाते हैं और आगामी जनमत संग्रह बहुत मायने रखता है ये अल्बर्टा वासियों को अपने प्रांत पर अधिक अधिकार दे सकता है हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति ओटावा के बजाय अल्बर्टा द्वारा की जाए और हमें अपनी ऊर्जा आप्रवासन और सामाजिक सेवाओं पर अधिक अधिकार मिले 19 अक्टूबर को एकजुट कनाडा के भीतर एक मजबूत और स्वायत्त अल्बर्टा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें वेबसाइट पर जाएं अल्बर्टा Referendum2026.ca इस विज्ञापन का भुगतान अल्बर्टा सरकार द्वारा किया गया है
4: The following program speaks to the East Indian community uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio the multicultural spirit of Calgary CHKF 94.7 FM

80s ट्रेंड की बात हो या फिर किसी सवाल का जवाब पूछने की बात, नौकरी खोने का डर हो या फिर AI से दोस्ती करने की सलाहें, आपने कभी AI यूज किया है? आपका जवाब हाँ में या ना में हो सकता है, लेकिन एक बात से आप अग्री करेंगे कि AI और ह्यूमंस का रिश्ता वक्त के साथ गहरा होता जा रहा है। पर ये रिश्ता क्या कहलाता है? जो जानकारी आप AI से साझा करते हैं उसके खतरे क्या हैं? और मान लीजिए कि अगर AI से बहुत इमोशनल लेवल की दोस्ती हो गई है, क्या ये खतरनाक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का मतलब है मशीन लर्निंग के जरिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की एक नकल तैयार करना। मशीन लर्निंग यानी कंप्यूटर प्रोग्राम को ट्रेनिंग देना ताकि वो सारे काम कर सके जो इंसान कर सकते हैं। कई मामलों में AI वो काम भी कर देता है जो इंसानों के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। पर ये होता कैसे है? कंप्यूटर प्रोग्राम को बहुत सारा डेटा दिया जाता है जिसमें ये प्रोग्राम पैटर्न तलाशता है, जैसे तस्वीरों में चेहरे तलाशना। जैसे इंसानों और जानवरों ने लाखों सालों से चीजें सीखी, AI भी इसी ट्रेनिंग डेटा सेंटर के लाखों चक्कर लगाता है और फिर बन जाता है एक स्पेशलिस्ट AI मॉडल। ये कभी आपके सवालों का जवाब देते हैं, कभी आपके कहने पर कुछ बना कर दे देते हैं, जैसे तस्वीर या वीडियो। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन कहते हैं कि 10 साल बाद ऐसे चैटबॉट्स होंगे जो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट की तरह काम करेंगे और आपकी जरूरतों को पूरी कर देंगे। पर ये खुश होने वाली बात है क्या? अगस्त 2026 में गार्डियन में सिमर बजाज और जोसेफ सैकरिन के छपे लेख में कहा गया कि AI के कारण डॉक्टर्स अपनी क्लिनिकल क्षमताएं खोते जा रहे हैं, जिसे डीस्किलिंग कहते हैं। लेकिन उन नए ट्रेनीज और मेडिकल स्टूडेंट्स का क्या जो अपनी समझ से पहले ही इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ असली खतरा सिर्फ पुराने हुनर के भूलने का नहीं बल्कि नेवर स्किलिंग यानी कभी ये हुनर सीख ही ना पाने का है। और ये चिंता सिर्फ मेडिकल फील्ड को लेकर नहीं, हर क्षेत्र को लेकर है। पर ये तो काम की बातें हुई, पर माय डियर फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप का क्या? AI चैटबॉट्स में दोस्त ढूंढना एक ऐसी चीज है जिसे यू कांट इग्नोर। IIM लखनऊ की 2026 की एक रिसर्च से सामने आया कि रेप्लिका जैसे AI कंपेनियन एप्स पर लोगों की निर्भरता खतरनाक रूप से बढ़ रही है, जहां 1.5 लाख से ज्यादा यूजर रिव्यूज में ये पाया गया कि लोग अपने इस वर्चुअल दोस्त पर इमोशनली डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। क्या कोई मशीन वाकई आपकी दोस्त बन सकती है? डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा बैंगलोर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और डिजिटल एडिक्शन के मामलों को करीब से देखते आ रहे हैं। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि जब लोग अपनी पर्सनल फीलिंग्स AI चैटबॉट्स के साथ साझा करते हैं और उससे जुड़ाव महसूस करते हैं तो उसे अलाइजा इफेक्ट कहते हैं। अलाइजा इफेक्ट का मतलब है अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम इंसानों जैसी बातचीत करता है तो हम उसे इंसान जैसा समझने लगते हैं, जबकि ये सिर्फ पैटर्न पर जवाब दे रहा होता है। ये नाम 1966 के अलाइजा नाम के एक शुरुआती चैटबॉट से आया जो बस यूजर की बात को सवाल बनाकर लौटा देता था, फिर भी लोग उससे दिल की बातें करने लगे थे। मसलन मैं उदास हूँ तो मशीन ने जवाब दिया, तुम उदास क्यों लग रही हो? BBC हिंदी से बात करते हुए डॉक्टर शर्मा बताते हैं कि AI चैटबॉट्स को ऐसा बनाया जाता है कि ये हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाए, आपकी तारीफ करे और बिना किसी रोक टोक से आपकी बातें सुने। इस वजह से लोगों

लगता है कि ये बहुत समझने वाला और सच्चा साथी है। जब कोई इंसान अकेलापन, खालीपन, तनाव, डिप्रेशन या रिश्तों की कमी से जूझ रहा होता है तो ये बिना किसी डर के एआई से अपने दिल की बात शेयर करने लगता है। धीरे धीरे उसका लगाव एआई से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इसका उल्टा असर ये होता है कि इंसान असली दुनिया के लोगों से कट जाता है, उसका अकेलापन और ज्यादा बढ़ जाता है और वो पूरी तरह एआई पर निर्भर हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि एआई के खतरे क्या हैं? एआई कंपनी एंथ्रोपिक की नौकरी छोड़ चुके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर जेकब कॉक्सन ने सितंबर 2026 में बीबीसी से कहा कि अगर एआई की बेलगाम रफ्तार पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो ये आने वाले समय में इंसानी वजूद के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले प्रोफेसर जेफरी हिंटन के साथ ही कई शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि भविष्य में एआई बेहद शक्तिशाली होकर इंसानों को पूरी तरह खत्म कर सकता है। हालांकि एआई के एक और धुरंधर माने जाने वाले यान लेकून इस डर को खारिज करते हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि एआई दुनिया की लगभग 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे अमीर गरीब के बीच की वित्तीय असमानता और ज्यादा बढ़ सकती है, खासकर तब जब जेनरेटिव एआई पूरी तरह से गलत जानकारियों को भी सच की तरह पेश कर देता है। डीप फेक जैसी तकनीक के जरिए महिलाओं की तस्वीरों के साथ हो रही छेड़छाड़ के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लेखकों, गायकों और कलाकारों का आरोप है कि एआई कंपनियां उनकी बिना सहमति और पैसे दिए उनके काम का इस्तेमाल एआई को ट्रेन करने के लिए कर रही है। तो क्या एआई से दूरी ही जरूरी है? द वायर्ड की रिपोर्ट बताती है कि किस तरह एआई चैटबॉट्स जैसे मॉडल्स के साथ काम करते समय सावधानियां बरती जा सकती हैं। तो अगर आप चैट जीपीटी पर 80s वाइब्स ट्रेंड के लिए अपनी तस्वीर डालते हैं तो ध्यान रखिए कि पर्दे के पीछे कई ऐसी बातें होती है जिनके बारे में आम यूजर्स को पूरी जानकारी नहीं होती। इसे ऐसे समझें कि जब आप चैट में फोटो भेजते हैं तो वो तस्वीर और उससे जुड़ा सारा मेटा डेटा, जैसे फोटो खींचने की जगह, तारीख, समय और डिवाइस की जानकारी ओपन एआई के सर्वर पर आपकी चैट हिस्ट्री के साथ सेव हो जाती है। जब तक आप खुद इस चैट को डिलीट नहीं करते ये तस्वीर वहाँ रहती है। सिर्फ तस्वीर ही नहीं, आपकी निजी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार कार्ड अगर आपने डाला है तो इन सब का बेजा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि अपनी पर्सनल जानकारी एआई पर देना किसी चौराहे की दीवार पर या होर्डिंग पर लगाने जैसा है। उसके बाद उसका कौन क्या इस्तेमाल करेगा ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूजर्स के पास इससे बचने का विकल्प है। आप अपनी अकाउंट सेटिंग्स में जाकर, डेटा कंट्रोल्स में जाकर इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन वाले विकल्प को टर्न ऑफ कर दीजिए या बंद कर दीजिए। हालांकि जब आप अपनी चैट या कोई तस्वीर डिलीट कर देते हैं तो वो आपकी स्क्रीन से तो हट जाती है, लेकिन ओपन एआई के बैकअप सर्वर और सुरक्षा प्रणालियों में वो कुछ दिनों तक या हफ्तों तक नियमों के तहत अस्थायी रूप से स्टोरियों में वो कुछ दिनों तक या हफ्तों तक नियमों के तहत अस्थायी रूप से स्टोर रह सकती है, इससे पहले कि उसे पूरी तरह हमेशा के लिए मिटाया जाए। एआई यूज के मामले में डॉक्टर मनोज शर्मा पॉज की सलाह देते हैं। PAUSE यानी P का मतलब है प्रेवेंट ओवर रिलायंस, यानी जरूरत से ज्यादा निर्भरता ना रखें। A का मतलब है एक्टिव ह्यूमन कनेक्शन, यानी सुनिश्चित करें AI से बात करने के चक्कर में लोगों से मिलना ना छोड़ दें। U यानी अंडरस्टैंड द मशीन, AI की सीमाएं और खतरों को लेकर जागरूक रहें। S यानी सेट गार्डरेल्स, सीमाएं तय करें और ज्यादा भावुक मामलों के लिए AI पर निर्भरता कम रखें। और E यानी एनफोर्स नॉन ह्यूमन बाउंड्रीज, याद रखिए कि ये सिर्फ एक मशीन है और उसमें इंसान तलाशने की कोशिश न करें। चैटबॉट से वैसे ही बात करें जैसे आप बस में अपने बगल में बैठे किसी अनजान व्यक्ति से करते हैं। इधर उधर की बात करिए, बस दिल के राज खोलकर न रखिए। जैसा कि शायर साहिर लुधियानवी ने भी कहा है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो आप तय कीजिए कि एआई का साथ किस खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना अच्छा।

0: राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले जाने के बाद लेकर के एक सर्वे में सामने आया कि 30% के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले जाने के बाद लेकर के एक सर्वे में सामने आया कि 30% से ज्यादा कनाडाई लोगों को लगता है कि अमेरिका कनाडा पर हमला कर सकता है। रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स में 34 साल तक सैन्य अधिकारी रहे और कई वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल क्रिस्टोफर कोट्स ने कहा कि कनाडा और अमेरिका के बीच युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, मैं अपने पूरे करियर के दौरान सैन्य अभियानों में शामिल रहा और हमने कभी इस संभावना पर विचार नहीं किया कि अमेरिका की धरती से कोई सैन्य हमला हो सकता है। कोर्ट्स ने बताया कि कनाडा और अमेरिका सैन्य रक्षा के कई पहलुओं पर मिलकर काम करते हैं। दोनों देश नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड के तहत आर्कटिक क्षेत्र में संयुक्त रक्षा अभियान भी चलाते हैं और अक्सर एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करते हैं। इसी वजह से कोर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका कनाडा पर हमला करता भी है तो इसकी शुरुआत सशस्त्र हमले से नहीं बल्कि साइबर युद्ध जैसे अधिक गुप्त तरीकों से हो सकती है। युद्ध का पहला चरण काफी छोटा हो सकता है। इस साल की शुरुआत में द ग्लोब एंड मेल अखबार ने कनाडाई सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए एक मॉडल के बारे में रिपोर्ट की थी। उसके मुताबिक अगर अमेरिका कनाडा पर हमला करता है तो कनाडा की स्ट्रेटेजिक पोजीशन एक सप्ताह के भीतर ही अमेरिकी सेना के कब्जे में आ सकती है। कनाडाई सेना की संख्या भी जल्द ही अमेरिकी सेना के मुकाबले काफी कम पड़ जाएगी। इसके बाद कनाडाई बलों को अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए गुरिल्ला युद्ध जैसी रणनीति अपनानी पड़ सकती है। अखबार ने जनवरी में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया था कि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे सहयोगी देशों से कनाडा को समर्थन और रक्षा सहायता देने के लिए कहा जाएगा। हालांकि कोर्ट्स ने कहा कि ये मॉडल सैन्य युद्ध योजना के अपेक्षाकृत हल्के स्तर पर है। उन्होंने कहा कि कनाडा अपने नेटो सहयोगी देशों की तुलना में पीछे रह गया था, खासकर इस मामले में कि अगर कभी उस पर जमीनी हमला होता है तो उससे निपटने के लिए उसकी कोई ठोस योजना हो। उनके मुताबिक अस्थिर माहौल के इस दौर में कनाडा अब इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसका एक संकेत हाल ही में कनाडा के रक्षा प्रमुख की उस अपील से मिला जिसमें उन्होंने देश की सेना का आकार बढ़ाने की बात कही थी। इसमें लगभग 3 लाख ऐसे सिटीजन सोल्जर्स को शामिल करने का भी प्रस्ताव है जिन्हें सीमित सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका के नजरिए से भी कनाडा पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका के कनेक्टिकट की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हेवन में राष्ट्रीय सुरक्षा के एसोसिएट प्रोफेसर मैथ्यू स्मिथ ने कहा कि अमेरिका के पास बहुत बड़ी सैन्य ताकत होने के बावजूद कनाडा के खिलाफ युद्ध के लिए अमेरिकी लोगों और राजनीतिक व्यवस्था से समर्थन हासिल करना उसके लिए मुश्किल होगा। उनका कहना है, मुझे लगता है कि अगर कनाडा पर हमला करने का आदेश दिया गया तो बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य अधिकारी इस्तीफा दे सकते हैं। वे इसे गैरकानूनी और अनैतिक आदेश के रूप में देखेंगे। स्मिथ ने कहा कि कनाडाई और अमेरिकी सैनिक नियमित रूप से साथ में सैन्य प्रशिक्षण करते हैं और एक दूसरे के प्रति आपसी सम्मान रखते हैं, लेकिन अगर दोनों देशों के संबंध इतने खराब हो जाएं कि सैन्य संघर्ष की नौबत आ जाए तो संभव है कि अमेरिका कनाडा के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिजों पर कब्जा करने और राजनीतिक नेतृत्व को हटाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। वो कहते हैं, आपको शायद वैसा ही एक सैन्य अभियान देखने को मिले जैसा आपने वेनेजुएला में देखा था। हालांकि उनका मानना है कि अमेरिका की सैन्य क्षमता अधिक है, लेकिन उन्होंने कहा कि बराबर संख्या और परिस्थितियों में कनाडाई सैनिक भी मजबूती से मुकाबला करने में सक्षम होंगे।
1: जी, वैसे आज तो पहला मैं रिपोर्ट सुनता है, देखता है, क्योंकि कनाडा का जेड़ा ओवरऑल स्ट्रक्चर ही इस तरह का भी अमेरिका वास्ते अपने आप ची बेवकूफी होगी, क्योंकि एडा वड्डा कनाडा उन्होंने ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਦ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇੰਡੀਆ ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੁਝਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ

0: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Adab. You're listening to Calgary's most popular radio, Radio Sahara, 94.7 FM.
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrang Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrang Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrang.ca or call 403-400-0203.
5: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 ਆਪਣੇ ਸਾਥ।

0: अपराध शामिल ने। यह कार्रवाई न्याय विभाग की ऑपरेशन टेक बैक अमरीका मुहिम का हिस्सा दसी गई है। सरकार का कहना है कि इस मुहिम तहत गैर कानूनी इमीग्रेशन मनुखी समगलिंग कार्टेलों और अंतरराष्ट्रीय अपराधिक गिरोहों विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह आंकड़े सिर्फ न्यू मैक्सीको के अमरीकी अटॉर्नी दफ्तर वालों चलाए जा रहे फौजदारी केसा के ने। इन्हों लोग शामिल नहीं जिन्हों इमीग्रेशन अधिकारियों ने हिरासत च लैके सिर्फ प्रशासकी इमीग्रेशन कार्रवाई या डेपोटेशन प्रक्रिया च पाया हो। सोमवार को मेडिसन
1: एक खबर हो गई जी नाल दी नाल तुहानू दस दिए भी क्यूबिक दे अंदर जी पार्टी क्यूबिक वा जी हुण ओह गवर्नमेंट फॉर्म करन जा रही है। मिनोरिटी गवर्नमेंट होएगी ते ओपोजिशन जी ओह लिबरल जी इत्थे देणगे। ये जिहड़े ताज़ा लेटेस्ट आंकड़े जिहड़े सामने आ रहे ने क्योंकि इस तों पहलां जी इन्होंने गवर्नमेंट जी फॉर्म की सीगी 2022 दे विच 2012 दे विच की सीगी ते प्रेजेंटली 127 सीटां दे विचों 64 सीट्स जिहड़ियां ने जित पाए है ते एटलीस्ट इन्हां जित्तण दी लोड़ है जिहदे करके फिर ये पार्टी जिहड़ी है फॉर्म कर सकदी है। हुण सो फार जिहड़ियां डेटा चल रहे ने सीटां दे उहदे हिसाब दे नाल मिनोरिटी गवर्नमेंट जिहड़ी उह फॉर्म करनगे ना कि मेजोरिटी गवर्नमेंट। थोड़ी जी होर इहदे बारे इनफॉर्मेशन जिहड़ी उह शेयर करांगा मैं बट इस तों पहलां प्रोग्राम दे विच होर गलबात करिए एक छोटी जी कमर्शियल ब्रेक लैने ब्रेक लैके ते फिर बाकी दीआं खबरां ते गल्लां तों तुहाडे नाल इसे तरीके नाल जारी रहणगे जी।
2: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
3: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
4: पेश है लाइफ लाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
3: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
4: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
3: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
4: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
3: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
4: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग कोई खास इवेंट प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान ज्यादा भरोसा ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास दिखाइए सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
6: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIE applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillo ate Inderjot Kaur Tillo ikko chhat hethe immigration ate insurance diyan sewawan ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 403-225-1111 ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟਡ
7: ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ
6: 403-225-1111
5: ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਰਟ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਟੂ ਐਵਰੀ ਕੋਰਨਰ ਵਿਦ ਇਨ ਅ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੀਚ ਸਾਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵੌਇਸਿਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਨੈਵਰ ਬਿਫੋਰ ਵੈਦਰ ਯੂਅਰ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ ਏਰਡਰੀ ਚੈਸਟਰਮੇਅਰ ਕੋਕਰੇਨ or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond. We are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਬਰੰਗ ਡੋਟ ਸੀ ਤੇ ਵਿਜਿਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਕਰਡ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ 23

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: 94.7 FM Radio Sursangam. Har hafte weekante suno. Monday to Friday. Sham 4 to 5. Kuldeep Singh Vichar Charcha. Sham 8 to 9. Jitendra Pannu. RadioSursangam.ca. Phone 403-585-0910. Radio Sursangam.
2: अल्बर्टा में संगठित अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। हम पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए 8 मिलियन डॉलर का निवेश कर रहे हैं, ताकि अल्बर्टा के परिवारों, व्यवसायों और समुदायों के लिए खतरा बने गैंग्स, एक्सटॉर्शन और आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। यह धन कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक मजबूत निगरानी, खुफिया जानकारी, डिजिटल फोरेंसिक और जांच क्षमताएं प्रदान करेगा, ताकि संगठित आपराधिक गिरोहों को खत्म किया जा सके और अल्बर्टा वासियों को सुरक्षित रखा जा सके। अल्बर्टा सरकार की ओर से एक संदेश। जदों तुसी नवा घर बनाउंदे हो तां तुसी उन्हां कम्युनिटी सहूलतां लई उड़ीक नहीं करना चाहुंदे जो उस थां नूं इक असली गुआंढ वर्गा अहसास दिंदियां ने। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे विच हक्सली एरिया, जिथे पहले परिवारां दे आउण तों पहलां ही पार्क अते पैदल चलण वाले रस्ते तैयार ने, शॉप्स अते स्कूल नेड़े होण अते शहर दे वख-वख हिस्सियां तक तेज पहुंच दे नाल हक्सली तुहानूं जुड़िया रखदा है। बिना जगह कुदरत जां जीवन दी गुणवत्ता दे नाल कोई समझौता कीते। अज ही हक्सली दे 12 शोहोम्स वेखो। घरां दी कीमत मिड 5 लाख तों शुरू। विजिट करो genesisland.com।
3: Calgary's oldest, biggest and only South Asian radio station, Sabarang Radio 94.7 FM.
4: Monday, Tuesday, Thursday, Friday 7 to 8 p.m. Sundays 1 to 5 p.m.
3: Visit sabarang.ca.
1: Punjab to prasidd patrakar Jitendra Pannu ji nu somvar to shukrawar Radio Sursangam 94.7 FM te suno. Hafte de 20 ghante Radio Sursangam. RadioSursangam.ca. Phone 403-585-0910. Radio Sursangam.
5: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
1: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उन्हां नूं लगदा तू मूविंग लई कहूंगा। कौन इन्ने भारे समान नूं हथ पावे।
0: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
2: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो। 4038701790 403-870-1790 स्टार मूवी।
3: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट। सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
4: The time is 9 p.m.
5: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store, connecting you to the community anytime, anywhere.
1: अल्बर्टा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जुर्म के लिए कोई जगह नहीं है। हम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों की मदद के लिए $8 मिलियन की सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि अल्बर्टा के खानदानों, कारोबारों और कम्युनिटीज के लिए खतरा बनने वाले गैंग्स, एक्सटॉर्शन और मुजरिम नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। ये फंडिंग कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद मजबूत निगरानी, खुफिया मालूमात, डिजिटल फॉरेंसिक्स और तकनीकियाती सलाह फराहम करेंगे ताकि ऑर्गेनाइज्ड मुजरिम ग्रोहों का खात्मा किया जा सके और अल्बर्टा के बाशिंदों को महफूज रखा जा सके। हुकूमत अल्बर्टा की जानिब से एक पैगाम।
2: Calgary's oldest, biggest and only South Asian radio station, Subarang Radio 94.7 FM.
3: Monday, Tuesday, Thursday, Friday 7 to 8 p.m. Sundays 1 to 5 p.m.
2: Visit subarang.ca.
4: 94.7 FM Radio Sursangam. Har hafte weekante suno. Monday to Friday, sham 4 to 5. Kuldeep Singh Vichar Charcha. Sham 8 to 9, Jitendra Pannu. Radio Sursangam.ca. Phone 403-585-0910. Radio Sursangam.
5: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनिया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
4: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757।
3: मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स।
5: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ।
6: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ, ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਆ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਐਟ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 ਤੇ।